जी हाँ दोस्तों, साथी आपका स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो के लाइव प्रोग्राम में। मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश, और हमेशा की तरह हम आ जाते हैं आपके साथ में एवरी सैटरडे को। और इस बार हमारे पास कुछ

0: sen bir gayet mücesin bedava ayı.
1: Arıyor sabah. Kaun takura.
0: Apşır mumca. Sayı umur bayga bay. Rep sırdağını. O rağmızırka hendile takur.
1: Bu takur. Kuski sadi ha. Sadi kam hai. Kam hai sadi.
0: Sırdağ.
2: चाहे ठाकुर की शादी हो या गब्बर की चाहे कुछ भी ओकेजन हो बाल तो कटाना है हैंडसम तो दिखना है तो सिर्फ एक नाम याद रहे अपुन का चॉइस नीर बाबा बोले तो एनजेड फ्लेम्स बाबा 190 आई वेरेकी रोड प्रिनवा स्टेज नो अपॉइंटमेंट्स नेसेसरी नीर बाबा इज एन एक्सपर्ट इन रेगुलर हेयर कट्स फ्लैट टॉप रेजर शेव स्किन फाइट सीजर कट्स रेजर कट्स चिल्ड्रन कट्स एंड बियर्ड ट्रिमिंग उसका नंबर है 027-127-3687 या तो फिर 039-74-3171 सुअर के बच्चों नाम याद रहे NZ Flames बाबा
3: जी हाँ दोस्तों साथी आपको पूरा स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो इस लाइव प्रोग्राम में मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर अविनाश और जैसे मैंने शुरू में बोला था जो लोग हमारे साथ फ्रीक्वेंसी पे थे कि हमारे पास गेस्ट जुड़ चुके हैं और हम आज बात करने जाएंगे बॉलीवुड मस्ती नाइट और जो लोग हमें फेसबुक में भी देख रहे हैं जुड़ रहे हैं हमारे साथ में उसको हम कहेंगे Good night or thank you for joining us and today we are going to give you full information about Bollywood Masti Night to hum swagat karenge Mohammed ji ko apne show mein aur saath saath mein Arvind hai jise zyada karke log kuttu ke naam pe jante hain so he is here and today they are going to give us full information about this show aur mere khayal se it's not long yahi weekend hone ja raha hai it is happening this Saturday isi Saturday ko ye show hai और अगर आपने टिकट नहीं लिया देन दिस इज द टाइम दैट यू मस्ट बाय द टिकट्स तो चलो मोहम्मद जी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आई नो काफी ठंड है बाहर
4: थैंक यू फॉर इनवाइटिंग विनेश भाई
3: जी हाँ तो ठंडा तो है ना काफी
4: जी हाँ काफी काफी ठंडा वेरी ठंडा है लेकिन यू नो इसी तरह से हम लोग विंटर में किया है तो वी नो लॉट ऑफ पीपल जैसे बाहर नहीं जाते ठंड के समय तो शोज में उन लोग काफी इंटरेस्टेड रहते तो इट शुड बी गुड
3: जी हाँ और अरविंद जी आई नो ठंड तो है भारी बट आज का आपका दिन कैसे बीता
5: दिन तो सही गया फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विनेश जी जो आप कर रहे हो हमारे फ्यूजन कम्युनिटी के लिए जो प्रमोशन वगैरह लाइक न्यू टैलेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट आप काफी कर रहे हो सो या और हम जो ये प्रोग्राम अभी हमारा आने वाला सैटरडे को रहेगा बॉलीवुड मस्ती नाइट जो टेम्पलटन कम्युनिटी सेंटर पे रहेगा 64 क्रोड इन टेम्पलटन हम यही चाहते हैं कि लोग आए और देखे नए उभरते कलाकार हाउ दे परफॉर्म कैसे परफॉर्म करते हैं काफ़ी लाइक बहुत सारे ऐसे भी लोग हमारे साथ गाते हैं जो हिंदी नहीं जानते बट बॉलीवुड गीत गाते हैं सब कुछ केरला से है कुछ श्रीलंका से है So it will be a family night, alcohol-free family night event. So हम यही चाहते हैं कि अगर बच्चे भी आए सब enjoy करें. Thanks, Vinesh.
3: जी हाँ, बिल्कुल. जैसे आपने सुना है कि this is a family night जो होने जा रहा है Bollywood मस्ती night और ये पहली बार नहीं. मोहम्मद अली, I mean आपने तो काफी सालों से ना ये कर रहे हो.
4: जी
3: हाँ, I know and काफी venues आपने बदली भी किया है. I know आपका पहले इधर Wainoni side भी आप करते थे.
4: अब इस बार अब देखते हैं कि हम लोग टिकट का सिर्फ $10 रखा है क्योंकि ज्यादा करके सब परिवार समेत आए मनोरंजन ले
3: जी डेफिनेटली बिकॉज टिकट प्राइस डज मैटर अभी तो आप देख रहे हो कि जिस तरह भी चल रहा है ना इन्फ्लेशन वगैरह एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग तो नो थैंक यू सो मच हम कहेंगे सभी की ओर से हम आपको भी शुक्रिया करना चाहेंगे फॉर कंसीडरिंग दैट आई नो आपका भी ओवरहेड कॉस्ट काफी होता होगा एंड इट्स हार्ड टू यू नो अपना इवन सब एक्सपेंसेस कवर करना भी मुश्किल होता होगा बट थैंकिंग ऑल द स्पॉन्सर्स की एवरीबॉडी हैव कम ऑन बोर्ड और आपके जो टीम है दे आर ऑल देयर

0: और जैसे आपने सुना इट्स ओनली $10 टिकट्स आप आ सकते हो एंड इफ यू वांट टू बाय टिकट्स तो मोहम्मद अंकल को जो लोग जानते हैं या तो फिर टीम मेंबर्स को जानते होंगे और कुट्टू को तो काफी लोग जानते हैं बट इज देयर एनी अदर प्लेस दे कैन कम
1: टू बाय द टिकट्स सर और दे कैन कम एंड बाय इट फ्रॉम द होल
0: फ्रॉम द होल इटसेल्फ जी हां
1: इस बार हमने जो खाने पीने के भी बंदोबस्त जो किया है इट विल बी लाइव कुकिंग ओवर देयर चाइनीज मील मिलेगा पुलाव मिलेगा कुछ भी तो अगर इफ फैमिली सोचते हैं कि लेट्स गेट आउट एंड एंजॉय द नाइट एंड दे कैन हैव एवरीथिंग टुगेदर
0: ओह वाओ दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग सर पहले मर्तबा होगा कि यू आर गोइंग टू गो टू अ वेन्यू जहां पे खाना बन रहा है
1: जी हां
0: Which is exciting. So don't miss it. आप जा सकते हो एक होल है जहाँ पे मैं गया था पापानुई में and that was a similar इधर होल था and everything was happening उधर cooking था and you could buy like fresh जैसे बन रहा था तो but otherwise you don't really get to see that ज़्यादा करके जो बना हुआ खाना था but this is very interesting. This something different. आप आ सकते हो. So it is happening at Templeton Community Center जो 64 के Kekud, is it Cake Drive?
1: No,
0: Cake Road. Cake Road. So it is a 64 Cake Road. Me, ab ja sakte ho, jo Templeton mein hai. Aur obviously, this is a very common hall abhi ho chuka. Just because people have actually moved from east to the other places. So udhar Rolston bhi nazdik hota hai, aur Wigram as well, and even yahan se bhi travel karenge. I don't think it should take us 30 minutes.
2: Utne to nahi lagega. Zada ek chiz aur bata do. Kafi log confuse kar dete apne aap ko Templeton aur Pebbleton Hall se. आप ख्याल रखें ये टेम्पलटन में है टेम्पलटन 64 क्रिक रोड इन टेम्पलटन वहीं पर है और साथ साथ विनेश जी मैं कुछ अपने स्पॉन्सर्स को थैंक यू करना चाहता हूँ लाइक विदाउट देम ये सक्सेसफुल नहीं होता दे आर वेरी हेल्पफुल फर्स्ट ऑफ ऑल है हेल्थी एआर के सुमित वर्मा ही इज़ वेरी हेल्पफुल अभी भी हमारे साथ आता एवरी डे Like he's trying to help in each and every thing. Or All Transport Trek Services Limited ke Lawrence. साथ साथ में है हाकोर्ट्स के नौशाद ग्लोबल फ्रेश के अमीर और हाकोर्ट्स के एक और है रवि रवि भी बहुत हेल्पफुल बंदा है हर वक्त तैयार रहता है हेल्प करने लग फिर उधर देखते हैं जो वाइटा हफ फार्मसी है वाइटा हफ फार्मसी रोलस्टन में है उसकी मालकिन है अमिता वर्मा उसकी उसके तरफ से और फिर हमारा एक और है अंतिम में वो है उसका नाम भी रवि है रवि आर एन एम पार्टनर्स वो अकाउंटिंग फर्म चला रहा है अपना सो उस सो ही इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल गाय फिर बाद में आएंगे हमारा जो हक्स प्रीमियम है वो भी एक स्पॉन्सर है हमारे जो रेस्टोरेंट है उनका चल रहा है वो भी एक स्पॉन्सर है सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ द स्पॉन्सर्स थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर योर हेल्प
1: और मेरे भाई ये जो स्पॉन्सर्स है ऑल ऑफ देम दे आर ऑल फ्रॉम अ फिजियन कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप तो द ओनली रीजन दे आर यू नो दे आर कि दे कैन हेल्प पीपल एज वेल दे कैन यू नो दे विल बी देयर इन बाय फेस पीपल कैन सी देम एंड मीट देम अगर कोई किसी को घर खरीदना हो या अकाउंटिंग करना हो या गाड़ी मोटर ठीक करना दे विल बी देयर
0: गाड़ी की अगर बात करते हो तो यहाँ पे हीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है फ्रिजी में तो चल जाता है हम एयर कौन ढूंढते हैं बट यहाँ पे हैव टू मस्ट हैव अ हीटर अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तो इफ यू आर हैविंग एनी इश्यूज दोस पीपल विल बी देयर जैसे अरविंद ने कहा तो डू कम टू द शो एंड एंजॉय योरसेल्फ एट द सेम टाइम मीट दोस पीपल एंड ऑफ द डे हम सभी तो फिजी के मोस्ट ऑफ देम एंड बट आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट अदर्स एज वेल जो लोग फिजी के नहीं है एंड जैसे आपने बोला कि बड़ी बात है दे डोंट एक्चुअली स्पीक दैट लैंग्वेज लेकिन फिर भी दे आर सिंगिंग इन दैट लैंग्वेज और तभी हम हर वक्त बोलते भी है कि म्यूजिक का लैंग्वेज बेरिया नहीं होता है ना इट इज जस्ट लाइक म्यूजिक इज म्यूजिक किसी भी प्रकार से म्यूजिक अगर प्रेजेंट करोगे देन पीपल डू अप्रिशिएट इट और साथ साथ में जैसे हमने भोजन की बात की है कि दे देयर इज गोइंग टू बी फूड तो आई एम गेसिंग दे हैव टू ब्रिंग मनी
1: जी
0: सो
1: नथिंग विल बी मोर देन $10 स्टार्टिंग फ्रॉम 5
0: जल्दबाजी में आते हैं शाम को आते हैं सडनली जो नो डिसीजन मेक कर लेते हैं कि चलो हम चलते हैं एंड फिर

0: में नो अंधेरा जल्दी हो जाता है एंड देन इफ टू फाइंड दोस इफ वाज मशीन्स और अभी तो काफी जगह चेंज हो चुका है अभी सभी जगह मिलता भी नहीं नो वी रिड्यूस कर दिया है द अमाउंट पहले जितना हुआ करता था सो डोंट वरी यू कैन जस्ट कम टू द डोर टिकट्स विल बी अवेलेबल आप एफ पोस्ट से भी बाय कर सकते हो टिकट्स ऐसे हमने शुरू में बोला इट्स $10 यू कैन बाय टिकट्स एंजॉय सेल्स खाना वगैरह रहेगा एंड साथ साथ में जब भी फिजी का प्रोग्राम होता था आई एम गेसिंग देयर विल बी कवर Kava ki vyavastha hui?
1: Yeah. Kava will be on sale.
0: Okay.
1: Kava bina to show.
0: Yeah, exactly. Kava bina show ho nahi sakta hai. So there you go. Kava bhi rahega. So you can come, bring your friends, mates and have a good time. Idhar aap, you know, maze loge aur udhar geet wagera chalte rahega. And just out of interest, jo aapke jo singers hai, kuch naam aap bata sakte ho?
1: Achni. Achni, she's one of the best singers. उनके साथ में है जीना जोसेफ है दे ऑर फ्रॉम केरला जितिन टीना जितिन जॉन जितिन जोसेफ देनिशिया दे फ्रॉम एंड वी हैव कुनाल कुनाल या कुनाल एंड दीप इज अ न्यू गाय जस्ट केम इन दीप विल बी सिंगिंग देयर एंड विद देम इज बसंत और
0: बसंत आचारी
1: बसंत या बसंत ही इज गुड सो अच्छे अच्छे सिंगर्स है काफी अच्छे सिंगर एंड देयर विल बी अ गुड सॉन्ग सिलेक्शन भी काफी सही है
0: जी काफी तो काफी कुछ भी सिंगर्स के आप लोग ने सुने होंगे किसी न किसी प्लेटफॉर्म में या तो फिर बॉलीवुड नाइट में भी आपने देखे होंगे इसलिए आज नहीं वी नो क्वाइट वेल तो काफी जो सिंगर्स है जिसको आप पहचानते भी होंगे और फिर एवरी टाइम वही होता है कि वी गेट टू नो न्यू सिंगर्स एज वेल विच इज अनदर गुड थिंग इसीलिए जब ऐसा कुछ शो होता है विच हैज बीन going on for many years kabhi kabhi koi question pucha jata hai na what aap naya kya karoge the thing is agar koi singing mein agar jo passionate hai jiska paas wo passion hai they will realize ki definitely it's always new kyunki jo jis tarah geet gaate hain the setups hota hai and then new songs are coming aur kabhi kabhi jo geet aap sunte ho but the way they mix kar dete hain gana ko to you'll have that new feeling but abhi jo list aap bata rahe the maine kuch naam suna nahi you know aap kuttu ka naam miss kar diye hai aur aap
1: हम हैं सिंगर बट हम उतने प्रोफेशनल तो नहीं है इसलिए हम जितने प्रोफेशनल सिंगर हैं उनके नाम आपको बता दिए हम भी परफॉर्म करेंगे अपना भी और ऐसे बहन गुलशन भी है अश्विन जी है वो भी उनका भी एक दो गीत रहेगा बट ज्यादातर गीत जो है हम यंग जनरेशन को देंगे बिकॉज दे वो सब नए गीत लेकर आए हैं एंड लॉट ऑफ फास्ट नंबर्स टू सो यंग जनरेशन के लिए काफी अच्छा शो है
0: आपने जैसे सुना कि और भी काफी जो सिंगर्स है जो गीत गाएंगे आप सुनोगे बट एट द सेम टाइम आई नो देयर विल बी मेनी पीपल दैट वी विल वांट दोस फैमिलियर फेसेस अब जब भी हम जाते हैं शो होता है देन ऑब्वियसली भी हम कुटुक को देखते हमारा एक्सपेक्टेशन होता है ना वो गाएगा ही गाएगा एंड वी वुड वांट हिम टू गो वैसा गीत जो किशोर कुमार का मे भी तड़कता फड़कता है कुछ सॉन्ग थोड़ा हेवी वॉइस में गाएगा देन वो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है एंड हम लोग काफी साल से एक दूसरे से मिलते हैं दिस इज व्हाट सो देयर्स अ डिसेंट जो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल रहेगा हु विल बी वांटिंग टू लिसन टू दोस और सो नो इट्स गोइंग टू बी प्रीटी एक्साइटिंग सो वंस अगेन इट्स हैपनिंग नॉट फार अवे बस यही सैटरडे को एंड इट इज एट टेम्पलटन हॉल सो डेट मार्क कर लीजिए सो इट्स जुलाई 25th ऑफ जुलाई रहेगा
2: इसका जो यू नो द प्रिपरेशन हो रहा है करीबन लगभग almost 3 months हो गया सो इसके पीछे आई लाइक टू थिंक यास्मीन बहन को गुलशन को भी जो अभी तक वो काम कर
0: रहा है बिहाइंड द सीन बहुत ज्यादा काम होता है अब कुछ भी ऑर्गेनाइज करो इजी नहीं होता है एक पोस्टर ड्रॉप अगर देख लो इवन पोस्टर जो क्रिएट करता है यू टू फाइंड ऑल द स्पाइसेस फॉर एवरीबॉडी सो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क बहुत वर्क होता है फिर ऑन द डे भी बहुत काम होता है तो आई नो इट्स नॉट एन इजी टास्क जो लोग ने कभी ऑर्गेनाइज कुछ किया देन यू विल नो घर पे भी कभी विजिटर्स आता है एंड वी हैव टू ऑर्गेनाइज समथिंग हमें पता लगता है इट्स नॉट दैट इजी और यहाँ तो बहुत बड़ा शो है जिसमें काफी लोग आते हैं सो इट्स गोइंग टू बी टफ बट आई नो यू विल मैनेज बिकॉज ये पहली बार नहीं यू हैव डन मेनी मेनी मेनी टाइम्स So it will happen और सभी चीज़ों की जो हम कहेंगे कि everything will be there आपने सभी कुछ consider कर लिया है
2: most of this poster making and creating all this has been done by all our family members उनके बच्चे उनके बिहार के I like to thank them too
0: जी हाँ सो
1: और डांस भी रहेगा विनेश
0: भाई हाँ मैंने भूल गया थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग
1: there will be a dance that will be performed by one of our bus driver and the wife
0: okay
1: yes he's he's quite a good dancer he's from Kerala so uska bhi night dance rahega usme

0: रहे, दो तीन डांस रहेगा और ज़्यादा करके गीत संगीत हुई होगा. सो एज यू कैन सी बॉलीवुड मस्ती नाइट ऑन 25th of July from 7 p.m. till 10 p.m. So, हम क्या करेंगे इस बार, हम समय पे पूरा शार्प 7 अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे और 3 आवर्स का प्रोग्राम रहेगा.
1: 3 आवर्स देखा जाए तो इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम गिवन आपने जितना नंबर ऑफ आर्टिस्ट है उसमें, फिर एक डांस भी रहेगा और इन अदर थिंग्स मे बी कमिंग इन बिटवीन एज वेल. तो 3 आवर्स इज वेरी शॉर्ट टाइम. तो मुझे मालूम है जब हम जाते हैं देर में पहुंचते हैं, बाय द टाइम 10 होता है देन वी वांट टू हियर मोर. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हॉल का भी अपना रेगुलेशंस होता है.
2: द हॉल इज बुक्ड टिल 11 o'clock.
1: ओके,
2: सो अगर हम लोग के और कुछ ज्यादा करने के टाइम समय मिलेगा तो कुछ कर सकता है.
1: But otherwise, I think if people can come on time, toh achha rahega unke liye.
2: We'll try and finish on time.
1: Because it's going to be only 3 hours. 3 hours toh jaga pata hi nahi lagega. Yeah.
0: So I think, Vinesh Bhai, people should not miss the first opening song. That will be a great one. I can promise that much. Aachni ka jo pehla geet rahega, wo bahut sahi geet hai. Aur iske baad mein bhi kafi nahi geet lekar aaye hain is par. Aur first numbers hai dancing ke liye. फैमिली आकर फैमिली के साथ, लाइक हमारा शौहर जब होता तो हम यही कहते कि आप